0: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. Prime Minister Narendra Modi has urged people to save fuel and reduce the use of foreign products to save foreign exchange amid West Asia crisis. Addressing a function in Vadodara, Gujarat yesterday evening, Mr. Modi reiterated his earlier appeal to revive COVID-era methods such as work from home, online classes, virtual meetings and reduced consumption of petrol and diesel, stressing on the need for collective efforts to reduce imports and help the country navigate the crisis. Prime Minister said, "There is a need for all of us to come together and fulfill our responsibility to reduce the burden on the country's resources."
1: आज समय की मांग है कि हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं. विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाएं, अपने गांव, अपने शहर, अपने देश के उद्यमियों को हम ताकत दें. विदेश में वेडिंग इनका फैशन खूब बढ़ रहा है और लेकिन इस पर भी बहुत विदेशी मुद्रा खर्च होती. जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाएं और वेडिंग के लिए भी मैं नहीं मानता हूं कि भारत से अधिक कोई अच्छी पवित्र जगह हो सकती है.
0: Prime Minister said that India spends lakhs of crores of rupees in foreign exchange to import many products from abroad, and the crisis has led to a steep rise in imported goods and severely disrupted global supply chains. Mr. Modi said that his government is working to ensure the impact of the crisis on Indians is minimal.
1: Sarkar bhi lagatar ye prayas kar rahi hai ki desh ke samanya nagrik par in sari viparit paristhitiyon ka कम से कम असर हो. लेकिन ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता. मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें.
0: Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma will be sworn in as Chief Minister of Assam in Guwahati today. Assam Governor Lakshman Prasad Acharya will administer him the oath of office in secrecy at a ceremony to be held at the Veterinary College playground in Khanapara area of the city. Four ministers, including two from the BJP and one each from the AGP and BPF, will also take

0: बहुत बहुत स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं आज का विचार, जिसे हमें भेजा है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं, कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, ना कोई परिवार, ना दोस्त, ना कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश कारिया जी आपके इतने सुंदर विचार के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो श्रोताओं, सबसे पहला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देश दीपदास जी का, पुणे से सुयोग बटवे जी का, डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी और सतीश अनेजा, करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का, और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है, इसी प्रकार से जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। तो आइए श्रोताओं, अब बारी है उन प्रश्नों के उत्तरों की जो कि पिछले सप्ताह हमने आपसे पूछे थे। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न था, उस ऋषि का नाम बताइए जिन्होंने अस्त्र बनाने के लिए अपनी अस्थियां दान में दे दी थीं। तो इसका उत्तर सुन लीजिए। इसका उत्तर है, अस्त्र बनाने के लिए अपनी अस्थियों का दान दिया था महर्षि दधीचि ने। श्रोताओं, हमारा अगला प्रश्न था, वस्तु विनिमय प्रणाली विश्व की किन किन सभ्यताओं में प्रचलित थी। तो इसका सही उत्तर है, मिस्र, मेसोपोटामिया, चीन और सिंधु घाटी की सभ्यता में आज से लगभग 10,000 वर्षों पहले वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। और अब अगला प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था, वो प्रश्न था, कौड़ियों का उपयोग मुद्रा के रूप में कब से होना शुरू हुआ। तो इसका उत्तर भी सुन लीजिए। इसका उत्तर है, कौड़ियों का इस्तेमाल मुद्रा के रूप में लगभग 2000 से 3000 ईसा पूर्व से होने लगा था। और अब हमारा अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न था, प्रारंभिक सिक्के किन धातुओं से बनाए जाते थे। तो इसका उत्तर भी सुन लीजिए। इसका उत्तर है, प्रारंभिक सिक्के लोहे, तांबे, चांदी, सोने और मिश्रित धातुओं से बनाए जाते थे। अश्रोताओं, अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, पहला कागजी नोट किस देश से आरंभ हुआ। तो इसका उत्तर है, पहला कागजी नोट संभवतः चीन से आरंभ हुआ। तो ये थे प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न, ध्यान से सुनिएगा। जी हाँ, हमारा आज का प्रश्न है, प्राचीन भारत के किस विद्वान ने अर्थशास्त्र पर पहली पुस्तक लिखी। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, प्राचीन भारत के किस विद्वान ने अर्थशास्त्र पर अपनी पहली पुस्तक लिखी। आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं। श्रोताओं, आपसे निवेदन है कि कृपया CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और LinkedIn पर भी जरूर फॉलो करें। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की जानकारी लगातार मिलती रहेगी। हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा। और आइए अब चलते हैं हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर। तो सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम पेड़ की बात। श्रोताओं, ये कार्यक्रम NCERT की कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक में मुद्रित एक विज्ञान लेख है, जिसे भारत के महान प्रकृति और भौतिक विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बसु ने स्वयं लिखा है और पेड़ पौधों के बारे में बड़ी गहराई से चर्चा करते हुए उनकी जीवन प्रक्रिया के बारे में बताया है। विशेष रूप से ये चर्चा की गई है कि पेड़ पौधों का अस्तित्व हमारे अस्तित्व के लिए कितना जरूरी है।
1: साथियों नमस्कार, हम सब प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के बारे में जानते हैं। उनका बचपन प्रकृति का अवलोकन करते हुए बीता। पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से प्रेम करते हुए उनकी शिक्षा आरंभ हुई। जीव विज्ञान, भौतिकी और वनस्पति विज्ञान में उनकी महारत थी। उन्होंने बांग्ला भाषा में बच्चों के लिए बहुत सी विज्ञान कथाएं और लेख भी लिखे। जगदीश चंद्र बसु ने कई विज्ञान कथाएं लिखी हैं, जिनमें से निरुद्देशेर गोल्पो यानी लापता की कहानी 1896 में लिखी गई और बाद में 1921 में पलटक तूफान यानी भगोड़ा समुद्री तूफान के रूप में प्रकाशित की गई, जो बांग्ला विज्ञान कथा साहित्य की शुरुआती कृतियों में से एक है। उन्हीं विज्ञान लेखों में से एक रोचक लेख है पेड़ की बात। जगदीश चंद्र बसु को बच्चों से बहुत प्रेम था। उन्होंने अपने घर में भी प्रयोगशाला बना रखी थी। छुट्टियों के दिनों में उनके पास बहुत से बच्चे विज्ञान के प्रश्नों के साथ आते रहते थे। एक दिन कुछ बच्चों ने सोचा कि क्यों ना उनके पास चलें? तो आइए दोस्तों, हम भी चलते हैं बच्चों के साथ सर जगदीश चंद्र बसु के।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं को अजीत का नमस्कार।

0: के पास और सुनते हैं ये विज्ञान वार्तालाप।
1: चलो चलो
2: सर से हम पेड़ पौधों के बारे में पूछेंगे।
3: नमस्कार सर।
4: नमस्कार। और इतने सारे बच्चे आजा, आजा, आजा। तो अब जरा अपना इंट्रोडक्शन दो।
5: सर मैं इशिता।
6: मैं हूँ चेताली।
7: मैं शुभेंदु।
8: और मेरा नाम है इंदु।
9: और मैं सोमेश।
4: बहुत अच्छा। तो बच्चों ये बताओ कि तुम लोगों का आना कैसे हुआ?
5: सर हम आपसे पेड़ पौधों के बारे में जानना चाहते हैं।
4: देखो पेड़ बनने की कहानी सबसे पहले शुरू होती है बीज से।
7: जी सर, मैंने अपने खेत में बीज को बोते हुए देखा है।
9: सर फिर क्या होता है?
4: फिर होता यह है बच्चों कि बीज मिट्टी में पड़ा रहता है लंबे समय तक। जैसे ही वर्षा की बूंदें पड़ती हैं और मिट्टी थोड़ी गीली हो जाती है ना, बीज मानो सोचता है।
9: बीज सोचता है? क्या सोचता है?
4: वो सोचता है अब मिट्टी में पड़े रहने का समय नहीं है। उसे लगता है मानो प्रकृति उसे बड़े प्यार से पुकार रही हो। जैसे
10: उठो, उठ जाओ, अब सोने का समय नहीं है, बाहर निकलो, सूर्य को देखो, अपने आसपास देखो, सब कुछ कितना सुंदर है।
5: वाह, कितनी सुंदर बात है।
4: अच्छा एक बहुत मजेदार बात तुम लोगों को बताता हूँ बच्चों। देखो जब अंकुर फूटेगा और डालियां निकलेंगी तो जड़ हमेशा नीचे की ओर ही जाएगी और तना ऊपर की ओर ही उठेगा। जानते हो एक बार मैंने एक प्रयोग किया था। एक गमले में क्या था बताओ?
11: पौधा।
4: शाबाश। परीक्षण करने के लिए मैंने कुछ दिनों तक पौधे को उल्टा लटकाए रखा।
11: उल्टा?
4: हाँ उल्टा। और जानते हो क्या हुआ? पौधे का सिर नीचे की तरफ लटका रहा और जड़ ऊपर की ओर।
9: फिर क्या हुआ?
4: फिर दो तीन दिनों के बाद मैं क्या देखता हूँ कि उसकी सारी पत्तियां और डालियां टेढ़ी होकर ऊपर की ओर उठाई और जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गई। ऐसा लगा जैसे पौधे को भी प्रकृति का ये भेद मालूम हो गया हो। है ना रोचक बात?
9: ये तो बड़ी रोचक बात है सर। सर एक बात बताइए, क्या पेड़ पौधे भी भोजन करते हैं?
4: हाँ हाँ क्यों नहीं। देखो हमें जिस प्रकार भोजन की जरूरत होती है ना, हमारे दांत होते हैं, है ना?
5: जी सर।
4: इसलिए हम भोजन को चबा चबा कर खाते हैं। लेकिन पेड़ पौधों के दांत नहीं होते, इसलिए वो केवल तरल द्रव्य या वायु से ही भोजन ग्रहण करते हैं। वो जड़ के द्वारा मिट्टी से रसपान करते हैं।
5: रसपान कैसे करते?
4: एक उदाहरण देता हूँ। जैसे पानी में चीनी डालने पर चीनी घुल जाती है ना?
5: जी सर।
4: वैसे ही मिट्टी में पानी डालने पर उसमें मिट्टी के बहुत से पोषक तत्व घुल जाते हैं। पेड़ पौधे उसी पोषक तत्व को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं।
5: अच्छा अब समझ आया।
4: तो अब इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए चलो चलते हैं अपनी प्रयोगशाला में।
11: जी सर।
5: यहाँ तो कितने सारे पत्ते बीज पौधे के तने रखे हुए हैं। अरे कितनी बड़ी प्रयोगशाला है।
12: यहाँ पे तो बहुत तरह के पत्ते हैं।
9: ये तो बहुत सुंदर पत्ते हैं, बिल्कुल हरे हरे।
8: देखो इतना बड़ा पेड़।
9: अरे उधर देखो सूखे पत्ते भी हैं।
11: अरे यहाँ तो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।
5: और ये मशीन क्या है? चलो चलो सर से पूछते हैं।
4: इसे कहते हैं सूक्ष्मदर्शी यंत्र यानी माइक्रोस्कोप।
9: माइक्रोस्कोप।
4: हाँ अब इसका कमाल देखो। इशिता तुम इधर आओ बेटा। हाँ देखो।
5: जी सर।
4: हाँ देखो अब मैंने क्या किया कि इस माइक्रोस्कोप के इस लेंस के ऊपर पौधे के इस तने को रखा। हाँ आओ देखो। देखो बेटा देखो इसमें देखो क्या दिखाई दे रहा है।
9: अरे वाह मुझे तो इसमें बहुत सारी छोटी छोटी नलियां दिखाई पड़ रही है।
4: शाबाश।
9: हाँ नलिया तो मुझे भी दिखाई पड़ रही है इसमें।
5: मुझे भी देखना है। सर मैं भी देखूं?
4: हाँ आओ आओ।
9: मुझे भी देखना है।
4: देखो क्या दिखाई दिया?
8: इसमें तो बहुत सारी नलियां हैं।

0: शाबाश, बिल्कुल सही, लाखों पाइप हैं।
1: पाइप?
0: हाँ, यानी जड़ मिट्टी से जिस पोषक तत्व को सोखती है ना, वो पोषक तत्व इन्हीं पाइपों के द्वारा पूरे पेड़ तक पहुँचते हैं।
1: अच्छा,
2: तो ये बात है।
0: अब देखो, जैसे हमारी नसें होती है ना, बिल्कुल यही बात है।
3: सर, पौधे वायु और सूर्य के प्रकाश से भी भोजन ग्रहण करते हैं, वो कैसे?
0: वृक्ष के पत्ते हवा से आहार यानी अपना भोजन ग्रहण करते हैं। क्या कभी तुम लोगों ने सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से पत्तों को देखा है?
1: नहीं सर।
0: और अब देखते हैं पत्ते को। कौन सा पत्ता लें? ये वाला पत्ता लेते हैं और इसे मैं यहाँ पर रखता हूँ माइक्रोस्कोप के इस लेंस के ऊपर। हाँ, अब देखो कौन देखेगा सबसे पहले। शुभेंद्र, तुम देखो, क्या दिखाई दिया?
3: अरे वाह, कितना अद्भुत है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इस पत्ते में अनगिनत छोटे छोटे मुंह हैं।
0: बिल्कुल ठीक। तो बच्चों, पत्तों के इन्हीं छोटे छोटे मुखों और जड़ों से पेड़ पौधे हवा से नमी ग्रहण करते हैं और सभी पोषक तत्वों को इकट्ठा करके अपना भोजन तैयार करते हैं। और जानते हो इसे क्या कहते हैं? इस क्रिया को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। अच्छा चलो बच्चों, अब एक और प्रयोग करते हैं। तैयार हो तुम लोग सब लोग?
1: जी सर।
0: तो अब सभी लोग बिल्कुल सावधान मुद्रा में खड़े हो जाओ, ऐसे। हाँ, शाबाश। और अब सब लोग एक लंबी सांस लो और अब छोड़ो। अब बच्चों ये बताओ कि तुमने सांस लेते समय क्या लिया और सांस छोड़ते समय क्या छोड़ा। इशिता, तुम बताओ।
2: सर, टीचर बताती है कि हम सांस लेते समय मुख्य रूप से ऑक्सीजन लेते हैं।
0: शाबाश। और शुभेंदु, तुम बताओ हम सांस छोड़ते समय क्या छोड़ते हैं?
3: सर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
0: हाँ।
3: लेकिन सर, यह तो जहरीली होती है।
0: बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे। देखो बेटा, मनुष्य ही नहीं, पृथ्वी के सभी सांस लेने वाले जीव जंतु ऐसा ही करते हैं। अच्छा अब जरा सोचो, अगर ये जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी होती रहे तो क्या होगा?
2: पृथ्वी पर जीवन नष्ट हो जाएगा।
0: सही कहा तुमने, शाबाश। लेकिन बेटा, जरा विधाता की करुणा और चमत्कार तो देखो। जो गैस हम जीव जंतुओं के लिए जहर है, पेड़ पौधे उसी का सेवन करके उसे पूर्णतया शुद्ध कर देते हैं, यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर उसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं, जिससे हमारा जीवन चलता है।
4: यानी यदि पेड़ पौधे नहीं होते तो
1: हम भी नहीं होते।
0: शाबाश। तो बताओ बच्चों, कैसी लगी आज की बातचीत?
1: बहुत अच्छी।
0: अब से एक काम जरूर करना।
1: क्या सर?
0: जब भी किसी पेड़ पौधे को देखना ना, तो उसे बोलना थैंक यू प्लांट,
1: थैंक यू ट्री।
0: शाबाश।
5: तो साथियों, अब हम किसी भी पेड़ या पौधे को देखकर धन्यवाद तो जरूर कहेंगे, लेकिन सिर्फ धन्यवाद से ही काम नहीं चलेगा। बात तो तब है जब हम सिर्फ धन्यवाद ही ना कहें, बल्कि उनका पूरा ख्याल भी रखें, क्योंकि वो हैं तो हम हैं।
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पेड़ की बात। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन वीरेंद्र रावत, बाल कलाकार सोहम, वान्या, अनुष्का और दृष्टि यादव, कलाकार परवेज गौहर और शिमाइला परवेज, नाट्य आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन और निर्माण सुरेंद्र कुमार। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पेड़ की बात। आशा है कि आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: तो आइए अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। हमारे अगले कार्यक्रम की कड़ी का दूसरा कार्यक्रम है

0: आपने मुगल बादशाह अकबर का नाम तो सुना है ना? शायद अकबर बीरबल का कोई मजेदार किस्सा भी सुना हो। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, जिनमें कवि, संगीतकार, गणितज्ञ, इतिहासकार, कुशल प्रशासक, सभी तरह के लोग थे। इन्हीं 9 रत्नों में से एक थे संगीत सम्राट तानसेन। तानसेन कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, किस धर्म को मानने वाले थे, इस विषय में तो भाई जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन अधिकतर कहानियों में ये बताया गया है कि तानसेन ग्वालियर के पास के किसी गांव के रहने वाले थे और उनके पिता का नाम मकरंद पांडे था। नन्हे तन्ना या तानसेन को पशु पक्षियों की बोलियों की नकल करने में बड़ा मजा आता था। वो अक्सर कुत्ता, बिल्ली, मोर, कोयल की आवाज की नकल उतारता रहता था। कभी कभी तो शेर की आवाज बनाकर लोगों को डरा भी देता। एक बार की बात है,
1: तो

अंधेरा हो रहा है। अभी तक तो कोई गांव दिखाई दिया नहीं, तो फिर आज यहाँ जंगल में ही

0: जीरा डालना होगा। छोले में कुछ खाने को है ही? बस कहीं पानी मिल जाए तो खा पीकर भगवान का भजन करें। पर यहां पानी कहां मिलेगा? लो जंगल के राजा बोले। पानी पीने आए होंगे। इसका मतलब पानी यहां कहीं पास ही में होना चाहिए। अरे वाह, ये क्या, ये तो कोई बच्चा है, झाड़ियों में बैठा शेर की बोली बोल रहा है। भाई वाह, क्या कमाल की नकल कर रहा है, खुद शेर भी सुने तो धोखा खा जाए। अरे बेटा, तुम तो बहुत गुणी हो, हैं? क्या नाम है तुम्हारा?
1: जी तन्ना, नहीं नहीं, मतलब त्रिलोचन।
0: ओ, तो त्रिलोचन, तुम यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? तुम्हें डर नहीं लगता?
1: नहीं बाबा जी, डर की क्या बात?
0: हाँ?
1: ये सब जानवर मेरे दोस्त हैं।
0: अच्छा?
1: मैं अक्सर आता हूँ यहाँ और इनकी बोली की नकल करता रहता हूँ। कभी कभी जब किसी आदमी को आते देखता हूँ तो शेर की तरह दहाड़ता हूँ, फिर तो लोग ऐसे भागते हैं कि क्या बताऊँ। लेकिन आप नहीं भागे, आपको शेर से डर नहीं लगता?
0: नहीं, तुम्हारी तरह मेरी भी इन जानवरों से दोस्ती है। अच्छा ये बताओ, यहाँ कहीं पानी मिलेगा?
1: पानी तो
2: तन्ना, ओ तन्ना।
1: अरे बाप रे, ये तो बापू की आवाज है, आज फिर देर हो गई, मार पड़ेगी। हाँ
2: अच्छा शैतान, यहाँ है तू, चल घर चल।
1: अरे बापू, मैं तो घर ही आ रहा था, रास्ते में ही बाबा जी मिल गए, कहने लगे कि प्यास लगी है, तो मैंने इनसे कहा कि आप मेरे घर चलिए, वहीं पानी पी लीजिएगा, इसी में देर हो गई।
2: हाँ हाँ बाबा जी, यहीं पास ही में हमारी कुटिया है, आज रात यहीं विश्राम कीजिएगा।
0: ठीक है ठीक है, चलो चलते
2: हैं। चल
0: आइए।
2: आप किस तरफ जा रहे हैं महाराज?
0: मैं वृंदावन के स्वामी हरिदास जी का शिष्य हूँ
2: जी।
0: दक्षिण की यात्रा पर निकला था, अब वृंदावन जा रहा हूँ।
2: स्वामी जी का नाम तो मैंने भी सुना है, जैसे संत महात्मा हैं वैसा ही गला है, सुना है बहुत सुंदर गाते हैं।
0: इसमें क्या संदेह है?
2: चाहता था कि ये तन्ना भी कुछ सीख ले, पर इसे तो शरारतों से फुर्सत ही नहीं।
0: तो फिर इसे गुरुजी के पास भेज दो
2: जी।
0: विधाता का दिया कंठ इसके पास है, साधना गुरुजी सिखा लेंगे। क्यों बेटा तन्ना, चलोगे मेरे साथ ना? वहां वृंदावन में यमुना के किनारे मोर हैं, हिरन हैं, उन सब के साथ खेलना और गुरुजी से संगीत सीखना है।
1: अच्छा हाँ, मुझे भी वृंदावन ले चलिए।
0: हाँ
1: मुझे जाने दोगे ना बापू?
2: हाँ हाँ बेटा, जाओ जरूर जाओ।

गोसाई जी की बात मानकर मकरंद पांडे ने तन्ना को संगीत सीखने के लिए वृंदावन भेज दिया। वृंदावन में संगीत के मर्मज्ञ स्वामी हरिदास जी ने बड़े मनोयोग से तन्ना को संगीत की शिक्षा दी। कुछ ही दिनों में तन्ना गायकी के साथ साथ रबाब और बीन बजाने में भी निपुण हो गया। उसके लचीले कंठ को स्वामी जी की शिक्षा ने ऐसी सरसता और मधुरता प्रदान की कि दूर दूर तक उसकी ख्याति फैल गई। उनका गाना सुनकर ग्वालियर के राजा ने उन्हें तानसेन यानी संगीत के सम्राट की उपाधि से अलंकृत किया और अपने दरबार में आश्रय दिया। उनकी मृत्यु के बाद तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र बघेला के पास चले गए। यहीं से तानसेन की ख्याति मुगल बादशाह अकबर के कानों तक पहुंची। उन्होंने तानसेन को

आगरा बुलवा भेजा। रीवा नरेश अकबर की बात टाल नहीं सके। तानसेन को आगरा जाना पड़ा। आगरा में तानसेन को बड़े सम्मान और पुरस्कार मिले। बादशाह अकबर तानसेन के गाने पर मुग्ध हो गए।

0: वाह वाह तानसेन, सुभानअल्लाह, तुमसे बढ़कर कलावंत ना कोई हुआ है और ना कभी होगा।
1: ये तो आपकी जर्रा नवाजी है जहां पना, वरना मैं किस काबिल हूं। हाँ, अगर आप

0: वाह वाह तानसेन, सुभानअल्लाह, तुमसे बढ़कर कलावंत ना कोई हुआ है और ना कभी होगा।
1: ये तो आपके जर्रा नवाजी है जहांपनाह, वरना मैं किस काबिल हूं। हाँ, अगर आप सचमुच संगीत की आत्मा के दर्शन करना चाहते हैं तो कभी वृंदावन चलिए।
0: तो क्या वृंदावन में कोई तुमसे बढ़कर फनकार है?
1: वो कोई मामूली फनकार नहीं है हुजूर, वो तो फन की, कला की जीती जागती तस्वीर है।
0: हम नहीं मानते। ये तो हो सकता है कि वो तुमसे ज्यादा जानते हो, लेकिन ये हरगिज नहीं हो सकता कि वो तुमसे ज्यादा अच्छा गाते भी हो।
1: हाथ कंगन को आरसी क्या, जिले सुबानी, आप खुद ही सुनकर फैसला कीजिए।
0: ठीक है।
2: कहते हैं उन्हें स्वरों की सिद्धि थी। वे जब दीपक राग गाते थे तो दीपक जल उठते थे, और जब राग मल्हार छेड़ते थे तो सावन की झड़ी लग जाती थी। उन्होंने पुराने रागों में कुछ स्वर बदलकर नए नए रागों की सृष्टि की। उनके बनाए हुए रागों में दरबारी, मियां के मल्हार, मियां की तोड़ी आदि बहुत प्रसिद्ध हैं। वे स्वयं पदों की रचना भी करते थे। उनके रचे कुछ ध्रुपद आज भी मौखिक परंपरा में सुरक्षित हैं। तानसेन के ही कारण बादशाह अकबर ने भी इन कवियों कलाकारों के बारे में जाना, उनके भजन सुने। एक विशाल हृदय वाला सच्चा कलाकार ही इस तरह का व्यवहार कर सकता है। तभी तो अकबर के समय के इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा है कि पिछले हजार सालों में तानसेन जैसा अनूठा कलाकार पैदा नहीं हुआ। आज भी ग्वालियर के पास तानसेन की समाधि संगीतकारों के लिए तीर्थ स्थली है।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम तानसेन, और अब इसी के साथ हम उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहते हैं। तो मुझे यानी अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: இதுவரை NCERT தேசிய கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி குழுமம் வழங்கிய விளம்பர நிகழ்ச்சியை கேட்டீர்கள். நமது ஆகாஷ்வாணி கோயம்புத்தூரில் தென்னை வளர்ச்சி வாரியத்தின் விவசாயிகளின் வரம் மரம் தென்னை மரம் தொடர் நிகழ்ச்சி நாளை காலை 8:30 மணிக்கு ஒளிபரப்பாகும்.

0: என்றும் நீங்கள்
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं उनके साथ परीक्षा पे चर्चा पढ़ने के लिए कहिए, उसकी चर्चा कीजिए। और कोई मंत्र है तो खास लाइन करके बताइए, देखिए ये पीएम ने ये कहा है तुम पढ़ो।
1: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।